0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल यू नो का कम पे ने
1: इटी यूनियो और रेडियो